कोई अमृत है नहीं, नफरत जी कोई जहर नहीं, प्यार जिहा कोई अमृत है नहीं, नफरत जही कोई जहर नहीं, घर वर्गी सरदारी है नहीं ते दुनिया वर्गी सैर नहीं, प्यो वर्गा सिर हाथ नहीं ते मां वर्गी कोई पैर नहीं, की शक्कर जिहा नाता है नहीं ते इट कुत्ते जिहा वैर नहीं, रलिया वर्गा सीगा है नहीं ते खिलर गया दी खैर नहीं, खिलर गई पंड तूड़ी वाली हवा लग्या उड जानी, जे गल विगड़ गई मुड़ के सूत नहीं आउनी, जे गल विगड़ गई ते मुड़ के सूत नहीं आउनी। सत श्री अकाल जी दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त रेडियो प्रोग्राम सबरंग दा सूत्रधार डॉक्टर दर्शनदीप हाजर हाँ सोमवार तो लैके शुक्रवार तक पेश हुंदे रेडियो प्रोग्राम सबरंग नूं लैके, जिस नूं तुसी सुनदे हो रात नूं 10 बजे तो लैके 11 बजे तक 5:30 AM दी फ्रीक्वेंसी दे उपर, जिथे तुसी हुणे हुणे सुनिया रेडियो प्रोग्राम उड़ान प्रभ संधू दे नाल। और ये सिलसिला लगातार सवेरे 4 बजे तो शुरू हो जाता है ते वक्रे वक्रे दोस्त मित्र भैन भरा अपनी अपनी समर्था दे मुताबक जिहड़े जिहड़े भी वक्रे वक्रे प्रोग्रामां नूं होस्ट करदे ने, तुहाडा मनोरंजन भी करदे ने, देश विदेश दीआं खबरां दे नाल अपडेट भी करदे ने, और बहुत अच्छियां अच्छियां शख्सियतां दे नाल तुहाडा रूबरू भी करवाउंदे ने। सो साडा भी टाइम हुंदा इस वेले 10 बजे तो लैके 11 बजे तक, ते साडी भी कोशिश हुंदी है कि असीं पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत नूं समर्पित इस प्रोग्राम दे विच अपने सभ्याचार अपने विरसे और अपनी पंजाबी मां बोली दी गलबात करके तुहानूं उत्थों दे नाल थोड़ा बहुत जोड़न दी असीं कोशिश करिए। सो सबरंग रेडियो जिसनूं पेश कीता जांदा है विश्व पंजाबी सभा दे द्वारा, विश्व पंजाबी सभा दे द्वारा रेडियो प्रोग्राम सबरंग दे नाल नाल तुसी पढ़दे हो ऑनलाइन पंजाबी अखबार, इस दी ऐप डाउनलोड करके तुसी पढ़ सकदे हो सवेरे रोज। VPS24.ca 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला IPTV चैनल दे पंजाबी सैक्शन दे विच जाके तुसी VPS24.hd भरोगे तां साडे IPTV चैनल दे नाल जुड़ जाओगे, जिथे तुसी सारा दिन बहुत अच्छियां अच्छियां पंजाबी दियां पुरानियां क्लासिक और नवियां फिल्मां भी देखोगे पंजाबी दियां, और उहदे नाल नाल विश्व पंजाबी सभा द्वारा जो जो गतिविधियां जिथे जिथे भी विश्व पंजाबी सभा दियां इकाइयां ने उन्हां सारियां दी रिकॉर्डिंग साडे कोले पहुंच जांदी है।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251।
1: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहिंदियां की करां
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
3: इत्थे बी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एन गैरी नूं
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533 ते
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
4: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026
5: ओए सावन चढ़िया ती
4: टोरंटो शो संडे 9 अगस्त नो
5: दुनिया मेले जानती
4: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो

सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों नूं माणदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते चढ़दी कला वाली सवेर दे विच खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक 7:05 हो चुके आ। थोड़ा साड़ा साथ होने तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

0: के सामने जिसको दांत नहीं है उसके हम मुंह में थोड़ी निवाला दे देते, नहीं देते हम उसको, क्योंकि उसको चबाना ही नहीं आता। तो ये बातों पे तवज्जो देना चाहिए, सबका ताल्लुक साइकोलॉजी से है, मंतिक बोलते हैं, और आपके वालिद साहब जो लफ्ज बोलते थे उसको बोलते हैं मजमून। सब्जेक्ट की जो बात करते थे ना पापा, आप बोले ना ये पापा बोलते, तो वो मजमून लफ्ज है, मजमून। तो मजमून यानी कि कोई चीज का बयान करना चाहिए, कोई चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपका मजमून क्या है, किस टॉपिक पे बोल रहे हैं आप, क्या सब्जेक्ट है, क्या चैप्टर है आपका। तो ये ऐसे है, और उर्दू वाहिद जबान है दुनिया में जो एक लफ्ज के कई मायने मिलेंगे आपको। ये वजह से फिल्म इंडस्ट्री में सारे गाने उर्दू में होते हैं। मुझे एक गाना हिंदी में बता दीजिए जो सुपर डुपर हिट हुआ हिंदी में, मैं 50 गाने बता दूंगा उर्दू में सुपर डुपर हिट हुए। चाहे वो कुछ कुछ होता है ले लीजिए, चाहे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, महबूब आया है या महबूब आई है बोलना चाहिए, आज तक कोई जवाब नहीं देता इस बात का कि ये महबूब आया है क्यों बोलते। महबूब तो वर्ड मर्द के लिए है, फीमेल के लिए तो महबूबा है,
1: ठीक है।
0: वो मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, धर्मेंद्र जी गाए थे जिनत अमान के लिए धर्मवीर में। तो मेरा मतलब क्या है कि महबूबा बोलना चाहिए, महबूब क्यों बोलते।
1: सही बात आपकी,
0: कोई जवाब नहीं दे सकता उसका सिवाय वो शख्स के जिसको इल्म है फारसी शायरी का, उन्हें बता सकता ये महबूब क्यों लिखते लफ्ज, महबूबा क्यों नहीं।
1: वो तो ये बातें हैं ना कि जो जुड़ गया है ना, राइमिंग कैसे बन रही, गाने को कैसे सही तरीके से गाया जा रहा है, बस वो कर देखते होंगे मुझे लगता है।
0: नहीं वो बात नहीं है, बल्कि फारसी इस्तेलात में फीमेल को मेल जेंडर करते हैं, वो लिखते हैं हमेशा फीमेल को मेल लिखते हैं फारसी में, तो इसलिए वो मेरी महबूबा नहीं है। वो महबूबा तो खैर वो गाना है, लेकिन बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है जो सूरज का गाना है राजेंद्र कुमार और वजंती माला पे पिक्चराइज हुआ, जिसमें पहली दफा एज ए विलन एक्टिंग करे थे अजीत साहब, हमारे हमीद खान नाम था उनका, हैदराबाद के थे, जो मशहूर विलन है शाकाल के नाम से, धर्मिंदर की कई फिल्मों में है, यादों की बारात, यू नेम इट ऑल द जंजीर में अमिताभ के साथ तेजा का रोल करे, काली चरण में करे लॉयन का वगैरह वगैरह, सुपर डुपर पर्सनैलिटी थी। ऐसा विलन अब नहीं पैदा हो सकता, अजीत नहीं पैदा हो सकता, जीवन नहीं हो।
1: जो शाकाल वाला वो तो कुलभूषण खरबंदा नहीं है, वो तो
0: नहीं, कुलभूषण खरबंदा तो वो शान फिल्म की बात कर रहे हैं आप।
1: हाँ,
0: वो शान फिल्म आई थी शत्रुघ्न सिन्हा,
1: शाकाल वही
0: नहीं, शाकाल नहीं, शाकाल तो हाँ वही थे शान फिल्म में, कुलभूषण खरबंदा करे थे ये शान फिल्म में, शान फिल्म 1980 में आई थी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो उनका यादों की बारात में फिल्म में बने थे, शाकाल नाम रखे थे, तो वो शाकाल वो बिल्कुल उनका वो था, उसमें उनके दो पाँव में अलग अलग जूते होते, चुनाचे पुलिस को धोखा दे के बॉडी को डाल देते ट्रेन के पास, तो वो बुला के बोलता आदमी को, भाई शाकाल तो मर गए, तो मैं बोलता उनकी बॉडी देख सकता हूँ, उनके कपड़े सामान जूते, तो देखने के बाद बोलता ये जूते जूते पलटा के देख के बोलता, शाकाल तुम कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो पर मेरी नहीं, तुम्हारे एक पाँव में 8 नंबर का जूता और दूसरे में 9 आता है, ये दोनों जूते 8 नंबर के है, शाकाल तुम जिंदा हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा बोलता। तो ये बातें हैं, बड़ी लॉजिकल फिल्म थी, बड़े लॉजिकल लिखने वाले थे, और सारे लिखने वाले उर्दू में थे, सलीम जावेद हो कोई भी, धर्मेंद्र साहब के जितने डायलॉग होते थे उर्दू में लिखते थे। ये बात बहुत सी चीजें नहीं पता थी मुझे, बाद में मालूम हुआ मुझे, अरे ये तो बोल के, जबकि धर्म साहब कभी जिस जमाने में डायलिंग रहता था उंगली का, उंगली से जो फोन डायल करते थे, तो जाते थे तो राजा मुराद को आवाज देते थे, राजा यहाँ आओ, बोलते जी धर्म जी कैसे सत श्रीकाल, भाई बेटे जरा ये नंबर जरा डायल कर दे बेटा। अच्छा, तो धर्म जी आप मुझे वहां से बुला के डायल करा रहे, तो यार इसमें मेरी उंगली तो पकड़ और इसमें डाल के बता, उंगली जा रही मेरी इसमें, तो आप सोचिए धर्म साहब अच्छा, की उंगली कैसी थी, उंगली के होल में नहीं जाती थी, तो फिर उन्होंने निकाल के उनको एक छोटी सी पेन में पेंसिल कुछ दे के बोली धर्म जी ये आप हमेशा साथ रखिए, जब भी डायल करना हो इससे कर लीजिए। तो ये होती बातें बड़े लोगों की, बड़ी बातें, बहरहाल वैसी पर्सनैलिटी अब नहीं आती। मैं नहीं समझता धर्म साहब जैसा कोई बंदा पैदा हो सकता, कोई नहीं पैदा हो सकता, डाउन टू अर्थ आदमी। मैं मिलने गया पेडर रोड के घर में, बुखार था वो नीचे आ गए, जबकि शर्मा बोला नहीं जी वो बुखार है, तो जा रहे थे तो बोले शर्मा कौन है सी, बतो जी वो कनाडा भी चाहे सी बंदा, बतो उठे ठहरो बोलो मैं आ रहा हूँ, बोले कितनी बड़ी बात है, बोलो
1: जी जी बिल्कुल,
0: क्या था लोग मेरे से नहीं मिलते तो क्या होता था, मगर वो एक मोहब्बत उनकी, आजा पुत्र इतने दूर भी चाहे सी तुसी बल्कि छप्पी दिए, कौन करता यार, कौन करता बताइए आप, और खुश होते थे शेर व शायरी बोल के, वो कुछ सुनाओ बोलते थे बैठ के, कुछ सुनाओ मुझे, कुछ सुनाओ शेरा सुनाओ, तो कितना इंटरेस्ट था उनको। तो ये बड़े लोग थे, अब नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। सत श्री अकाल जी, बहुत वक्त देने के लिए
1: जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बड़ी वधिया गलबात इन्होंने की है।

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: कल ना एक मुंडे ने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी।
1: हाँ, वो कदा?
0: वो मैंने पूछन लग गया भी तेनू गाना आंदा है?
1: अच्छा, ये बिच नाले अपमान वाली कड़ी गल हुई यार, सिद्धी जी ते गल पुछी उन्हें।
0: पर उन्हें काफी देर पहला मेरा गाना सुनन तो बाद सवाल किता ना।
1: हाँ, तेनू फिर सच्ची गाना आंदा है?
2: फट्टे मुँह तेरे।

0: वाले रेडी हो जाओ, बाय योर टिकट्स एट ticketmaster.ca और कॉल 6479648573।
1: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसी सुनदे सी मंडी टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है। ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार की एडवरटाइज करनी हो अफोर्डेबल पैकेज लई आज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो 7 डेज़ अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 5 do

वाह अभी वाह फ्राइडे जूनियर है वीकेंड आ गया आ गया आ गया आ गया हूँ इसी का हूँ वीकेंड इस प्रोग्राम च कर दिया थोड़ा गल्लां बातां ते लाउने रौनक गीत संगीत सुनाउने पूरा एन टॉप ऑफ द लाइन सारे गाने वधिया ने देखो यार मैं कल भी आई थिंक गल कर रहा सी कि हरेक दा टेस्ट डिफरेंट है हरेक दा ना हरेक दी प्रेफरेंस जिहड़ी है वो इक्को जिही नहीं हुंदी कोई गजलां सुन के खुश है कोई कवालियां सुन के खुश है कोई डिफरेंट जे कह लो डिस्को टाइप गाने सुन के खुश है किसी नूं सैड चाहिए किसी नूं भंगड़े वाले चाहिए किसी नूं चाहिए थोड़े चकवे जे भी मैं चक दूं मार दूं चलो ठीक है वो भी यार जदों गाहक हैगे उदां दे सुनने वाले हैगे तां बंदा क्यों नहीं करूगा पता नहीं किहड़ा गायक किसी ने कहा सी कि मैं इदां दा गाना कीता किसी ने सुनिया नहीं मैं फिर चक लो धर लो करता तां उहदे पता नहीं किन्ने व्यूज आ गए शो बुक होण लग गए एंड ऑफ द डे हरेक बंद ने रोटी तो खानी आ अपने परिवार को पालना तो है ही है सो जो तुसी लाइक करते हो सुना करो जो कोई चीज़ नहीं लाइक करते ना सुनो बट किसी चीज़ में बुरा कहना माड़ा कहना आई थिंक वो अपना काम नहीं हरेक को फ्रीडम है जिदा का गाना वो चाहते हैं कि रिलीज़ करना कर बट जरूरी नहीं भी आपको सुनना ही पैना सो प्रोग्राम पंजाबी गाना अभी थोड़े वधिया जी गाने लावे कुछ एंड थोड़ी कुछ एक फरमैशा होंगी कुछ एक साड़ियाँ होंदिया ने सानू प्रोग्राम शुरू होने तो पहला ही इंस्टाग्राम से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि यार आ गाना ला दो या वो ला दो सो सुनते हैं तो इंजॉय करते हैं तो प्रोग्राम पंजाबी लैके थोड़े लिए असं हाजिर हाँ।